राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan kate jam phansa. Bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you. The noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhure, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syo tor, kavan syo jore. Raag sorat, tal, choti tintal, 16 beats.

जो पहला पहला दुधारू स्वरूप प्याजा स्थावण होई तू करता करना मैं ना ही जाहो करीना होई।

0: भैया पाएंगे जब ते तुम्हारे तब ते गुमाम तेरे नियाने राम नीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने
1: सिमर शास्त्र भी सबे व पेट के आम एक न जाने कृपा तुम्हारी कर मैं न क्यों सब तो बखाने सगल दो।

सतगुरु में पाया सतगुरु ते पाया सह छेती मन वजियां वधाइयां राग तन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तो गावो अरी केरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया ए मना मेरिया तू सदा रो हर नाल हर ना रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो नाले साचे साहबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ जिस सो पाए सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिसकी वड्याइया कहे नानक सुनो संतो सवत रोपे यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पांच शोतित कर सवागे शब्द वाजे कला चित करतारिया पाइन दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया

0: तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्ने होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी।

वसे सार के संगा खिन में थापने वाजे ठाकुर खिन में थापने वाजे ठाकुर नीच कीट से करे राजंगा नीच कीट से करे राजंगा कबहु न रिसरा।

ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, पत पवित्र लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो, सगल कर्त नमस्कारो।

बहुत प्राचीन मधुर और परमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषव अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर धैवत अते संवादी ऋषव है। इसकी आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ पटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषव अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। पैरों का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द का गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा

पहला नियम है गुरसिख दा के गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। जेड़ा सतगुरु गरीब नूं सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहिंदे हन ओह गुरसिख तनखाइया है, ओह गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

तारा जड़ा है इस नू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैणी ए गुरसिख दा कर्म नहीं। कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी। गुरसिख दोनों वक्त कंगा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

अगला कर्म है भी दसवंध जड़ी किरत कमाई करनी उस विचों दसवां हिस्सा गुरु के अर्पित करना ते गरीबां गुरबियां दी सेवा करनी। दसवंध गुरु

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दे ना। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा, किरत दस ना होंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उसनू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लेनी टोप ले लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिन तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी धरै सात जन्म कुश

एक वाहेगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान, बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे। ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेखिया, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा बल्कि

खालसे नूं पहनाए ने। पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नूं अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नूं अज कहिंदे मैं इह बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजां ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन इह कबू ना होई, कदे वी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा।

शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार्ड खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होएगा।

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे पवित्र होवे ते फिर ओ गुरु दीयां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन रहत बिना ना सिख कहावै रहत बिना दर चोटां खावै रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जेड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया भाई देसा जी ने लिखिया बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ये गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान

साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी की शरण के अंदर रह रहे बड़े पतवंते कवि जिन्होंने साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन चरणा अंदर बिने की सतगुरु जिन्या गल्ला आप जी ने कहे हैं जितने वचन महाराज जी वह सब सच हुए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। तो गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की थी साहिब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जदों सिखां ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है ते पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहिब दी धरती दे उपर बैठे आ कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख दी पूजा विच लगा रहेगा उन्हां चिर एक कुराहे नहीं पै सकता जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दित्ती ना यह भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जिहड़े हन श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश कीते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावे वह अंब दा होवे, भावे किक्कर दा होवे, भावे दरख्त निम दा है, भावे टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है, झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी, क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुधां नूं इकट्ठियां कर लो, भावे वह घा दा दुध होवे, ते भावे मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया है, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकता, कोई उस नूं वेख नहीं सकता। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है, पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकता, इस करके इस गुण की पहचान होनी मुश्किल है, क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर बरण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

मैं तेनू एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परा हो जाए, समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बिरद भी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करदे कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग गया। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने, बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेअदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहिब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

जी महाराज दे चरणा च मथा टेकिया, पंज पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परकर्मा कीतिया, ते साहब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहब जी दे, ते चरण हाथ विच ना आए, ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ये कड़ा रूप है भाई दया सिंह, ये जड़ा तू वेखना ये साडा वास्तव स्वरूप नहीं। वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया, इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ च नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया, सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्यां वेखद्यां साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ए वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। शब्द गुरु मन दिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथीं दित्ती, ते नमस्कार करके ज्योति ज्योत समा गए। उस समय का वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया।

हाथ जब है जैसे सपना बिनसत लगनबा बारू पीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन जा तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवा अजो समझ रच बिगड़ो ना अजू समझ कच बिगड़ो ना भजले नाम मुरा भजले नाम

राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम का पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द का गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।